साइबर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्भर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान में 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्भर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति संध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: 4888।
1: जे जे ज्वेलर्स, शुद्धता को पहचान।
2: कैप्टन रेग्मीज फार्म हाउस।
3: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय।

0: केंद्रीय कार्यालय श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुरजू को चौक काठमांडू
1: टुगेदर वी डिलीवर।
2: कैप्टन रेग्मीज फार्म हाउस कमतान को बगैचा बेलकोटगढ़ी मदानपुर 12 देउराली।
3: संपर्क नंबर
2: 9841470164
3: 9032454
2: 9549527881।
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
6: जेजे ज्वेलर्स
7: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
0: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
7: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
8: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।

0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: ஆர்எல் சுச்சபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320711 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहचान।

ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं।

0: Sulanto! Mona! Sulanto! Sulanto!
1: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार

0: ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सगाई भाई।
1: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: One oh four eight.

0: சாவேல் சுச்சேபாக்கி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ। मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभी आपने सुना था नी नोवा लॉगिन के अपर रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज।
3: अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: Weekend Classic Radio Show.
1: अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक और एक नया हफ्ता और एक नए एपिसोड के साथ मैं यहां पर आ चुकी हूं। और आज का जो एपिसोड है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी बचपन की यादें जो हैं वो इस जमाने से जुड़ी हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ 90s के जमाने के बारे में। बॉलीवुड में 90s का वो वक्त था जब हिंदी सिनेमा को शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बेहतरीन एक्टर्स मिले और ऑडियंस को उनका रोल मॉडल मिला। इन एक्टर्स की काफी सारी ऐसी फिल्में थी 90s में जिसके लिए वन टाइम वॉच वॉज नॉट एप्लीकेबल। हम आज भी अगर कोई पूछे तो 90s की ही फिल्मों को अपनी फेवरेट फिल्में बताते हैं। वो उतनी ही फ्रेश और एंटरटेनिंग है आज भी अगर आप देखेंगे तो। ऑल्सो 90s का डेकेड मेरे हिसाब से वॉज लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड, चाहे वो म्यूजिक हो या फैशन, सभी कुछ में एक नयापन आया था। इनफैक्ट एक्टर्स खुद भी अपनी वर्सिटैलिटी प्रूव करने के लिए चैलेंजिंग मूवीज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आमिर 27 साल के थे जब उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में एक स्कूल बॉय का रोल किया था। तो जो जीता वही सिकंदर वॉज वन ऑफ द सुपर डुपर हिट्स ऑफ द 90s। फराह खान ने एक इंटरव्यू में रिवील भी किया था कि दीपक तिजोरी के रोल के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था। बट इमेजिन एट दैट टाइम दीपक तिजोरी वॉज अ बिगर स्टार एंड अ बेटर एक्टर देन अक्षय कुमार, तो दीपक तिजोरी को ये रोल मिला था। बात कर रहे हैं हम इस फिल्म की, थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं, स्कूल कॉलेज के दिनों की याद आ गई है। तो चलिए सुनाते हैं जो जीता वही सिकंदर से आपको पहला गाना, पहला नशा, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आज मैं आपको सुना रही हूं। आई होप आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। 90s की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बट अप्रिशिएटेड फिल्म वॉज लम्हे। ऑडियंस को ज्यादा खुश नहीं हुई थी इस मूवी से, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह का रिलेशनशिप दिखाया था, जो एज गैप दिखाया था, उस समय लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। आज तक भी कहते हैं कि लम्हे वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर आज की तारीख में ये फिल्म आती तो सुपर डुपर हिट हो जाती। वैसे कि आप जानते हैं कि यश चोपड़ा ओरिजिनली एक न्यू कमर को कास्ट करना चाहते थे फॉर द रोल ऑफ वीरेन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक्टर को अनकंफर्टेबल फील हो ये रोल प्ले करते हुए। लेकिन ये रोल लिखा तो गया था विनोद खन्ना जी को दिमाग में रख के, पर ये जब फिल्म पूरी हुई, स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हुई, तब तक विनोद खन्ना जी कुड नो लॉन्गर लुक लाइक अ 20-year-old। थोड़ी सी उम्र उनके चेहरे पे दिखने लगी थी, तो उन्होंने विनोद जी को कह दिया कि वो ये फिल्म में नहीं है। इस बात से विनोद जी काफ़ी अपसेट भी हुए थे। जैकी श्रॉफ ने भी इस रोल के लिए ट्राई किया था। उस समय दिल जले फिल्म कर रहे थे वो, और उस समय की उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी थी यश चोपड़ा जी को। यश चोपड़ा जी को वो अच्छे लगे थे, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ रही थी। और तब वो समय था जब मौके पर चौका मारा अनिल कपूर जी ने। लेकिन अनिल जी की मूछें जो थी ना, वो यश जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो फिर भी सोच रहे थे कि साइन करें कि नहीं करें। और उसी दौरान अनिल कपूर जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो घर पर ही रहे थे एक महीने भर के लिए। अब कुछ शूट वूट कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने मूछें शेव करा देते हैं। उन्होंने मूछें शेव कराई, तस्वीरें खींच के यश चोपड़ा जी को भेजी, और यश चोपड़ा जी को वो दिल से पसंद आ गए। एंड दैट इज हाउ अनिल कपूर जी इस फिल्म का हिस्सा बने। तो चलिए, लम्हे फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर जी और हरिहरन जी की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कभी मैं कहूँ। और यही वो समय था जब यश जी को शाहरुख खान का साथ मिला था। कैसे इन दोनों का ये पैर बना था, जो कि आज तक भी यशराज फिल्म्स के साथ शाहरुख खान का एक नाता सा है, बताऊंगी उसके बारे में आपको कुछ ही देर के बाद।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आपको सुना रही हूं और हिंदी सिनेमा में उस जमाने की कुछ छुपी हुई कहानियां जो हैं वो आप तक लेकर के आ रही हूं। वैसे 90s की शुरुआत ही हुई थी जब हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हुई थी और इंडस्ट्री में आते ही वो छा से गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ही वॉज क्वाइट इन टू माइंड्स कि वो एक ऐसा रोल करें कि नहीं करें जहां पर उन्हें एक नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा। वो अंजाम हो चुका था तो फिर उसके बाद भी वो थोड़े से डरे हुए थे कि एक ऑब्सेसिव लवर का एक पागल सा किरदार उन्हें डर फिल्म में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये उनके लिए सही होगा कि नहीं होगा। सनी देओल उस समय सुपरस्टार थे, बहुत पॉपुलर थे। उन्हें तो यश चोपड़ा जी ने चॉइस दी थी कि तुम चूज करो कि तुम सुनील मल्होत्रा का रोल करना चाहते हो या राहुल मेहरा का। सनी पाजी ने सोचा कि भाई मैं तो हीरो हूं, मैं विलन का रोल कैसे कर सकता हूं, लोगों को मैं पसंद आना बंद हो जाऊंगा। तो उन्होंने सुनील मल्होत्रा का रोल चूज कर लिया और शाहरुख खान को मिला राहुल मेहरा का रोल। एंड ये हम जानते ही हैं कि ये रोल कितना बड़ा हिट हुआ। बाय द एंड ऑफ इट सभी लोगों ने, देखने वालों ने, जो विलन है, जो शाहरुख खान का रोल था, राहुल का रोल था, उसके साथ में सिंपथाइज किया एंड रातों रात शाहरुख खान सुपर डुपर हिट स्टार बन गए थे। दो लोग थे जिन्होंने इस रोल को मना किया था और बाद में बड़ा पछताए थे। वो दो लोग थे अजय देवगन और आमिर खान। इन दोनों को ही राहुल मेहरा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था और दोनों ने ही इस रोल के लिए मना कर दिया था। सोचिए कुछ छोटे छोटे डिसीजंस कितना बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं हमारे करियर पे। तो चलिए डर फिल्म से ही आपको अगला गाना सुनाते हैं हम। उदित नारायण जी की आवाज में है ये गाना, जादू तेरी नजर। सुनिए जरा। जादू

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने की कुछ कहानियां आपको बता रही हूं, कुछ गाने भी उसी जमाने के आपको सुना रही हूं। उस जमाने के वैसे जो किस्से हैं वो बड़े ही रहस्यमयी टाइप के हैं। ऐसा लगता है कि छुपाए गए हैं काफी सारे ये किस्से, जिससे कि बुरी पब्लिसिटी ना मिले लोगों को। जैसे कि कौन से रोल किस एक्टर ने नकार दिए, मतलब ये तो कहानी जो है वो एंडलेस है, चलती चली जा सकती है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि डर फिल्म में शाहरुख खान का जो रोल था वो पहले अजय देवगन और आमिर खान दोनों को ऑफर किया गया था और दोनों ने ये रोल नहीं किया। उसी तरह क्या आपको पता है शाहरुख खान ने भी एक सुपरहिट रोल को मना किया था और वो रोल था विरासत फिल्म में अनिल कपूर जी का रोल। 1997 में प्रियदर्शन जी की मूवी आई थी विरासत। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सिनेमा हॉल खाली हुआ करते थे, क्योंकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थी, मसाला फिल्म नहीं थी। लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ के साथ में जो पब्लिसिटी मिली है इस फिल्म को, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान रियली रिग्रेटेड कि उन्हें ये रोल कर लेना चाहिए था। अमरीश पुरी जी का भी जो किरदार है वो पहले नसीरुद्दीन शाह जी निभाने वाले थे, लेकिन तबीयत में कुछ गड़बड़ी के चलते उन्होंने ये रोल छोड़ा और अमरीश पुरी जी को ये रोल मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ किसी और को इस रोल में जो कि अमरीश पुरी जी ने रोल किया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोल। इनफैक्ट इसमें पूजा पत्रा भी थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगी थी, लेकिन जो आवाज़ थी इस फिल्म में वो पूजा पत्रा की खुद की नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने पूजा पत्रा के लिए इस फिल्म में डब किया था। तो इतनी बात हो ही रही है तो सुनाते हैं आपको गाना इसी फिल्म से। सुनिए विरासत फिल्म का अगला गाना कुमार सानू और जसपिंदर नरूला जी की आवाज में। हर लड़की ने एक ना एक बार अपने आप को इस गाने में इमेजिन किया है। तारे हैं बाराती। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन मारीच जो सुवर्ण का वर्ग बनकर के आया, माताजी ने आग्रह किया, राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देख रहा पीछे, क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लू उतना ही कल्याणकारी। बाण लगती, हाँ लक्ष्मण कह दिया, माताजी ने उनको भी भेज दिया, रावण संत के रूप में आया, परम्बा का हरण कर लिया। दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है, दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा, तमिल भाषा में था। एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने, कहा कि माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने वहां तर्क प्रस्तुत किए। वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया, आकाश मार्ग से ले गया, तो उसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है, तब सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि एक माता जानकी जी के हरण से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में वो केवल मां ही हैं और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये उसको सांप लगा था, किसी भी स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। पर ये सांप थोड़ी लगा था कि माता जी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण माता का ही भाव था जानकी के प्रति। तो कहते हैं फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया। फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वाटिका में, तब अनुचरी करहुं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। चाहता था कि माता वास्तव में आपकी दृष्टि पड़ने से ही मेरा कल्याण होगा, इतनी स्त्रियों को मैंने यहां चुरा करके रखा हुआ है, ये और मैं हम सब पाप के भागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कृपा दृष्टि यदि मेरे और इनके ऊपर पड़ जावे तो हमारा और इनका सबका कल्याण हो सकता है। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार आप कृपा दृष्टि डाल दें, क्योंकि माता की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सारे दोष माफ, सौ खून माफ। जटायु को जब राम जी ने गले से लगाया और जटायु जी का दाह संस्कार किया, जबकि पक्षी का संस्कार ऐसा करना नियम विरुद्ध है, और भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया तो लिखा है कि जटायु हरि का रूप राम का रूप लेखन के वैकुंठ गया, हरि का रूप ले लिया, उसको मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न होता है कि जटायु को मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि मुक्ति को पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो जटायु के पास में तो था ही नहीं। एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट पक्षी यदि कोई होता है तो वो गिद्ध होता है, सामस भोगी, सामस भोजी होता है वो। ये गिद्ध जो होता है मरे हुए पशुओं को खाता है, उस परिवार में जन्मे थे जटायु जी। फिर उसको मुक्ति क्यों मिली? बोले सत्संगी होंगे। जटायु ने अपने जीवन में किसी संत के पास बैठकर 2 मिनट सत्संग किया ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई? बोले जटायु माला जपते होंगे, 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम है, तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वो हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों?
बोलो उसमें कोई सदगुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी। और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में, तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसे कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया, मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हां हां जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मंगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामि केजूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं इस आदमी के संग मित्रता मत कर। राम जी बोले क्यों नहीं, ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों, माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे परिचय नहीं था ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है ठीक है, यदि ये वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख रहा है कि कोई राक्षस हरण करके रह जा रहा है, तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। ऐसे भीरू ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों, क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा और माता की नजर उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहु कमात अवसर पाए, कबहु कांब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्र का राम के चरणों पर पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं, मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा। फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया और सब लोग जानते हैं। लंका में श्री हनुमंत लाल पधारे और हनुमान जी महाराज तीन विघ्न आए थे रास्ते में, और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई, मद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरी वह, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया, और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, राम के बिना घर में प्रकाश कैसा। 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते, हम पादुका कैसे पहने। 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा।

वजह से रघुबर को इतना क्लेश उठाना पड़ा और वो दौड़ते जा रहे। दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए, सैनिक रोक रहे, देखे रुके नहीं, उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ के धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। राम से कहा था 14 बरस से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे ही सरजू में छलांग लगाई, त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी देखा तो दो महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा कौन है आप लोग, मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका हैं, चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है, जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे, हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा। रूपशील और बलिय तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है। कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया। और भागवत में लिखा है 13,000 वर्षों तक राम जी रहे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, अपने ऋषियों का ही मंतव्य है कि 2,000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे, उनके पुण्य कार्य को अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2,000 वर्ष और निवास किया और अवधवासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई, और कृष्ण कथा 115 अध्याय में, बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण सप्तकोटि अपारा, हे भगवान 1,000 जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती, रामचरित इतना महान इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते, बोले राम कथा सुनाऊं, मैंने सुनाओ, तो बाबा कहते एक राम एक रामन्ना एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना तुलसी लग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा 1 मिनट में राम कथा, लेकिन राम कथा कहीं, जीवन बीत जाए राम कथा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा है विचित्र रामचरित्र। सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम, एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, एक बार वृंदावन ने भी कही थी मैंने राम कथा 9 दिन तक, बिल्कुल भागवत के क्रम से 6 घंटे रोज, बड़ा आनंद आता है। मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है, बड़ी आदर्श है। आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें। जल्दी गोकुल चलना है, बेचारे 2 बजे से ही पहने सज धज करके लोग बैठे हैं। हाँ तो कन्हैया के पास चलना है जन्म। अच्छा सुनिए, किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को, तो नहीं कहते तो भी चलता। बोले नहीं, कहना जरूरी था। याज्ञवल्क मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क जी ने उनको शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा कही।
तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुन

मिलेगा, तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता। और जब तक रामचरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा, तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए राम कथा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है, बड़ा विचित्र चरित्र है। कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो, राम की मर्यादा की दूरबीन आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं आना है। इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र। तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर लें, हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दो मिनट मन को शांत बनाएं। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए आप बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं।

भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं,

राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं। जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे, बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। राम कथा में जितनी एकाग्रता से आप थे, वैसी एकाग्रता रखें, अच्छा लगेगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुरबा इसी वंश में गाधी, गाधी के तने विश्वामित्र, गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम आदि। विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संजाति, आयति, वियति, कृति। उसमें यजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं, उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा।

0: वर्ष परमणि।
1: यदु और तुर्वसु ये दो पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु अनुपुरु तीन हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने, शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और जयाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर हजार वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानि हो रही है, पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यशयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया राजा जजाति। कहते हैं, माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधु के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती। बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति बन को चले गए, और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे, और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे। थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था, वो जल पान करने बैठे, एक चंडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा ये भी प्यासे। रंतदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया, और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े, और आकाश की ओर देख के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो, और यदि सबकी बातें तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए, मैं मोक्ष लेखन भी करूंगा क्या, केवल एक बर देना,

मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए। एक ही बर देना, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवंत दुखा। दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने दुखी जीव हैं, उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं, यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चलकर के पांचाल वंश, कौरव वंश, ये कई शाखाएं, शाखा पर शाखा निकलती चली गई, लेकिन जजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीठ, और देवमीठ महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन, और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में बास करते हैं, नवनंद, नंद बाबा आदि।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।